0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया तेरे

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर के
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: ठीक सवा छह ऑन दिस फ्राइडे की सुबह. दिस इज बिग 106.2
2: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: एंड क्या चल रहा है, क्या आज का क्या प्लान है? फ्राइडे जब आता है तो थोड़ा सा हल्का प्रेशर भी आता है यार, कि मतलब आई गॉट टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग प्रेपरेशन. यू नो, काम पे जाने की तो प्लानिंग कम होती है, लेकिन वीकेंड की प्लानिंग ज़्यादा होती है कि यार आप मूवी देखें तो कौन सी देखें, दोस्तों के साथ हैंग आउट करें कब करें, यू नो, वी गो आउट चेक आउट फ्यू रेस्टोरेंट, व्हाट्स द बजट लुकिंग लाइक. इट्स द 12th ऑफ जून, अभी से सैलरी जब आई तो आई राम गए राम हो गई. सी यार, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस यार, बट चिल आउट, रिलैक्स. इट्स द लास्ट डे ऑफ द वर्किंग वीक है, उसके बाद दो दिन ऑफ वीकेंड. जब आएगा वीकेंड तो उसके बारे में सोचेंगे. बट इन केस यू हैव अ सॉन्ग टू रिक्वेस्ट, लेट मी नो, सेंड मी अ मैसेज इन 4305 और यू कैन इवन कॉल मी 800-1062, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ द शो एंड इसमें यू कैन बिकम आवर अर्ली मॉर्निंग इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंस आप प्लेलिस्ट बताइए आप कि क्या सुनने के मूड में है. आई हैव गॉट माई ओन कपल ऑफ रिकमेंडेशंस कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. फिलहाल हियर्स ज़िंगाट. थोड़ी सी एनर्जी की कमी अगर लग रही है ऑन दिस फ्राइडे मॉर्निंग, दिस सॉन्ग इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 6:21 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह, 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। इट्स नाइस एंड सनी स्टार्ट ऑफ दिस फ्राइडे मॉर्निंग। फील्स मोर लाइक 36 डिग्रीज राइट नाउ। हाइज ऑफ 35, लोज ऑफ 31 डिग्रीज सेल्सियस।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Carnival, the last ride, King.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: It's 6:34 on the clock, and what is the one thing that most people are thinking about so early in the morning? It is neend. Neend ke baare mein aap soch rahe hain, uske baare mein thodi baat bhi kar lete hain. Something that might blow your mind.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Are you one of those people jo ki तकिए पे सर रखते ही सो जाते हैं, पांच मिनट में नींद आ जाती है, एंड देन यू लाइक हाँ नहीं नहीं नींद है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एवरीबडी एल्स इज लाइक अरे यार ब्लेस्ड ब्लेस्ड, ओ माय गॉड वाह यार क्या ब्लेस्ड यार, यू आर अमेजिंग यार, आई विश लाइक आई कुड लाइक फॉल अस्लीप इन फाइव मिनट्स. लाइक नाउ साइंटिस्ट्स आर एक्चुअली चैलेंजिंग दिस थॉट. वो कह रहे हैं कि अगर आपको पांच मिनट के अंदर नींद आती है, इफ यू फॉल अस्लीप इन अंडर फाइव मिनट्स, दैट्स नॉट अ साइन दैट यू आर टायर्ड. That's a sign that you're sleep deprived. So if in case 5 minute mein aapko neend aati hai, to you're sleep deprived. Bhai, matlab, karo iske baare mein kuch. Yeah, all that we believe, koi na koi scientist aake na usko challenge kar leta hai yaar. Are. Anyhow, aap ye sab chodo, Arijit Singh pe focus karo. Song ka naam hai Deva Deva. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: The football World Cup, FIFA World Cup is underway yesterday. Mexico versus South Africa का गेम आपने देखा क्या? Yeah, it was a bit late, I'll be honest with you. मतलब आज सुबह उठ के ही मैंने highlights ही देखे, but मेक्सिको कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं खेला गया. आई मीन और इट्स जस्ट दैट आई वाज वाचिंग फुटबॉल आफ्टर अ वाइल, बट द लेवल, द क्वालिटी ऑफ पासिंग एंड एवरीथिंग, द गोल कीपिंग इज जस्ट अनबिलीव, वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय मेक्सिको. हाँ, साउथ अफ्रीका ने कुछ डिफेंसिव मिस्टेक्स जरूर की थी, बट विच काइंड ऑफ कॉस्ट देम द गेम, बट इट वॉज फैबुलस स्टफ बाय मेक्सिको. एंड लॉट्स ऑफ आईब्रोज वर रेज्ड व्हेन बिफोर द वर्ल्ड कप यू नो सम प्रिडिक्शंस एक्चुअली सेड दैट मेक्सिको इज वन ऑफ द टॉप रनर्स to actually lift the trophy also. हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया. Yeah, calm down all Argentina fans. By the way, कल मैंने एक poll question आपसे पूछा था. Not a poll question, but I gave you a challenge that if you are supporting a team जिसका नाम Argentina या Brazil नहीं है, then let me know which team you are supporting. And the top answer, not very surprisingly, is England. बहुत सारे लोगों ने I got some Spain, I got some other, Portugal also, but the top answer was England, and it's been exactly 60 years, 1966 mein they lifted the trophy for the first and last time, but is this going to be their year? So are you also supporting England? Which team are you supporting? If you've got a strong opinion on that, give me a call, 800-1062 par. Yeah, the condition like yesterday is it should not be Brazil or Argentina. This is The Big Breakfast with me, Sid.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। Big 106.2

0: Part of Elite Group Holding.
1: गुड मॉर्निंग, इट्स पास्ट 7 AM ऑन दिस 12th ऑफ जून. आज फ्राइडे है. क्या प्लान है आपका? लंबा वीकेंड आने वाला है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैटरडे संडे, इट्स अबाउट द मंडे एज वेल. होपफुली फिंगर्स क्रॉस यू गॉट दैट लंबा वीकेंड. इफ यू डिड, क्या प्लान है? आर यू हेडिंग आउट फॉर अ स्टेकेशन और अ वेकेशन और यू नो हेडिंग आउट टू एनी सॉर्ट ऑफ नेशन? यू आर गोना एक्साइटेड अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ अ मूवी? या क्या कुछ प्लान है दोस्तों के साथ बनाया है, फैमिली के साथ बनाया है? इज समबडी कमिंग डाउन फ्रॉम योर होम कंट्री? इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू गॉट शेड्यूल, गॉट प्लान, शेयर इट विद मी. द नंबर इज 800-1062. देयर इज सो मच हैपनिंग इन बॉलीवुड, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट. इस सब के बारे में बात करने वाले राइट हियर ऑन बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फन एशिया नेटवर्क.

0: Market.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
7: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: मॉर्निंग टीक 7:15 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह 12th of June। इट्स 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। नाइस एंड सनी स्टार्ट एज एक्सपेक्टेड टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग। फील्स लाइक 36 डिग्रीज, हाइज ऑफ 35, लोज ऑफ 30 डिग्रीज राइट नाउ।
7: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
0: गुस्सा आ रहा है। देखिए, ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: वो फिल्म जिसके पहले हाफ की काफी तारीफ हो रही है, जवानी तो इश्क होना है, लेकिन सेकंड हाफ भी खत्म होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप गेम दैट्स ऑन राइट नाउ।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: साउथ कोरिया वर्सेज चेकिया, साउथ कोरिया इज लीडिंग 2189 मिनट्स के बाद, आई थिंक अराउंड 5 to 7 मोर मिनट्स इंक्लूडिंग स्टॉपेज टाइम होना चाहिए। एंड विल चेकिया बी एबल टू कम बैक, दैट इज व्हाट वी गॉट चेकिया आउट या, बट व्हाट अ नेम यार। मतलब इफ अ कंट्री इज, तीन बार इस कंट्री का नाम चेंज हुआ है। सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया था स्पेलिंग कॉन्टेस्ट का फेवरेट वर्ड, उसके बाद इट बिकेम चेक रिपब्लिक, एंड नाउ अच्छा खासा प्यारा चेकिया जिसका कैपिटल है प्रागिया, जहां पर एवरीबॉडी वांट्स टू गो। इफ यू आर पार्टी एनिमल यू डेफिनेटली वांट टू गो एंड चेक आउट प्राग। या सो लेट्स सी इफ चेकिया इज एबल टू मेक अ कमबैक। मेरे शो में कमी ऐसा होता है इस टाइम इन द मॉर्निंग के आई एम एबल टू गिव यू लाइव स्पोर्ट्स अपडेट, सो या आई एम एंजॉइंग इट वाइल इट लास्ट। सो या 6 मिनट्स का एडिशनल टाइम है, एडेड टाइम ऑफ 6 मिनट्स, सो चेकिया हैव 6 मिनट्स टू मेक अ कमबैक। फिलहाल हियर्स अमर सिंह चमकीला से इश्क मिटाए। आज ही वो दिन है जब इस टीम की एक और फिल्म आने वाली है। मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

जो जो नॉन स्पोर्ट फैंस है ना आपकी घर में, वो दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, सो यू बेटर स्टार्ट प्लानिंग इफ इट्स नॉट ऑलरेडी टू लेट। इफ यू गॉट अ ग्रेट प्लान, शेयर इट विद अस ना, कॉल मी 800-1062 पर। लेकिन एक और मौका मैं आपको दूंगा टू कॉल मी जब हम खेलने वाले हैं द बिग बॉलीवुड क्विज, चांस फॉर यू टू फ्लेक्स सम बॉलीवुड मसल एंड वॉक अवे विद टू ओपन मूवी टिकट्स राइट हियर ऑन बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फन एशिया नेटवर्क।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
4: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो।
3: क्या? Salary के लिए?
4: हाँ, अपनी salary directly E&Money Money में receive करो और ढेर सारे benefits पाओ।
3: जैसे क्या?
4: जैसे easy local और international transfers, bill payments, free card, सब कुछ एक ही app से।
3: Wow, ये तो काफी useful लग रहा है।
4: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी salary और भी ज्यादा काम करती है। इससे salary day काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो। Terms and conditions apply.
5: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
8: 8:12 12 नहीं होता ना 12 मिनट एंड इट्स 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, फील्स लाइक 38 डिग्रीज, नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग, हाइज ऑफ 35 राइट नाउ, लोज ऑफ 30 डिग्रीज.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: It's time for the big Bollywood quiz. आज मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही आसान सवाल पूछूं, लेकिन उतना भी आसान सवाल नहीं है.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Very simply, I'm going to ask you a question based on one of the most popular songs ever in Bollywood when it comes to days of the week especially. So, ek gana main aapko sunaunga, uske baad I'm going to follow that up with a question. Kyunki today is a Jumma. ये क्या बोली थी ये तो आपको पता है, जुम्मा जुम्मा दे दे, दैट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. और आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म में, फिल्म का नाम है हम, या अगर आपको लग रहा था फिल्म का नाम पूछूंगा, नहीं, इट इज अ बिट मोर डिफिकल्ट देन दैट. आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या था. नाउ द क्लू फॉर यू इज दैट इट इज द नेम ऑफ एन एनिमल. सो दो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन ए इज इट टाइगर, या ऑप्शन बी इज इट लॉयन. No, in Bollywood, it is not lion, it is a loin. So give me a call, 800-1062. That's the number, 800-1062. Call kijiye, you could win two open movie tickets in the big Bollywood quiz. Hum mein Amitabh Bachchan ka naam kya tha? Tu bhi jaldi aa, mujhe mat maar par. Call pe aa, 800-1062 par. Here's Diljit Dosanjh meanwhile with Naina from the film Crew. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: बॉलीवुड।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Thing you upgraded your TV. Feels like the stadium.
4: Had to. World Cup's close. Got 1,000 dirhams off on TV and save 25% on soundbar. You can also save up to 200 dirhams with ADIB covered cards.
3: Football fans, bring the game home. Shop at Sheriff DG and win exciting gifts. T&C apply.
0: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 100.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: It's 8:22 on the clock. Let's start with the capital, Abu Dhabi. Mein koi congestion nahi on this Friday morning. Let's move towards Dubai, Sharjah. You'll find a bit of congestion 44 par jitna aadhe ghante pehle tha utna nahi hai. Things are getting much better. Russell Khor Industrial pe heading towards D3. You'll find 2 se 3 minute ki der. Chalte hain 311 ki aur. Yahan par all the way till city center Mirdif from city center Zaya. You'll find slow moving traffic and then going towards Nadal Hamar also. When you cross Mirdif, a bit of congestion. E11 par bhi heading southbound traffic you'll find at another interchange 1, and there's a bit of congestion building up 5 se 6 minute ki der S116 par, and this is going towards 611 from 311.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जाना वक्त न तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
0: Big 106.2.

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: So something very special that's lined up for today, the 12th of June. Aaj 4:30 baje the trailer of Dhamaal 4 is going to release.
0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Yeah, 6:12, 4:30 pm. Yeah, yani ki 12 June ho gaya na. To aaj 4:30 baje Dhamaal 4. It's so difficult to keep track here. Kaun sa five houseful five, and then you know welcome etc. Ye sab ka pata nahi kaun sa installment hai. Welcome 3 hai ya 4, but then they're calling it Welcome to the Jungle. So yeah, I mean if you're able to keep track of all of these, then you are a big Bollywood fan. Yeah, and it's all about being a big Bollywood fan because hum khel rahe hain the big Bollywood quiz and I ask you a question. Aaj bahut hi aasan sawal hai, aasan tha already, usko aur aasan kar diya. It's a Friday and that is why we're talking about this song. Dekha jaye to pure hafte hum log yehi to karte hain, jumma jumma chillate rehte hain yaar. Film ka naam hai hum. Aapko mujhe batana hai ki इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम क्या था. इट वॉज बेस्ड ऑन एन एनिमल, नॉट बेस्ड एक्चुअली, इंस्पायर्ड बाय एन एनिमल. व्हाट एनिमल वाज इट? आई गिव यू टू ऑप्शंस आल्सो. इज इट टाइगर और इज इट लायन? अगर आपको जवाब पता है, गिव मी अ कॉल, लेट मी नो. 800-1062 पर लास्ट चांस फॉर दिस मॉर्निंग फॉर यू टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. एंड टॉकिंग अबाउट सीक्वल्स एंड स्पिरिचुअल क्वेल्स, वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Long weekend bus kuch ghanton mein aane wala hai, lekin there is one person in the UAE jis pe long weekend ka zyada hi kuch pressure hoga.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: And that person ka naam hai Arjun with me on the phone line right now. Arjun.
2: How are you?
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, मेरे भाई, क्या हाल है? कितने बड़े हो गए?
2: थोड़ा सारे तुझे बताना
1: नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन ये बताओ कि क्या प्लान है यार? I mean, is there more pressure on you over this long weekend? के यार एक तो लंबा वीकेंड, ऊपर से तुम्हारा बर्थडे, तो ट्रीट.
2: नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ प्लानिंग कर नहीं रहा, घर वाले करेंगे. माय वाइफ इज गोना प्लान समथिंग फॉर मी. मैं कुछ भी नहीं कर रहा अपने बर्थडे पे.
1: ये शादी Honestly. थोड़ी कर रहे हो कि मतलब दूल्हा अपनी शादी में काम नहीं करता वाला फंडा है आपका?
2: मेरा बर्थडे, आई शुड फील स्पेशल, राइट?
1: यू कैन डू सम वर्क एंड फील स्पेशल आल्सो. देयर इज नो रूल व्हिच सेज कि आपने काम किया तो यू कांट फील स्पेशल.
2: काम पे आ गया, उससे ज्यादा क्या काम करूंगा.
1: हाँ, ये भी है यार. चलो, बट कुछ प्लान्ड है ओवर द लॉन्ग वीकेंड? या आर यू स्टेकेशन पर्सन, वेकेशन पर्सन, आर यू रेस्टोरेंट मूवी पर्सन, व्हाट आर यू?
2: एवरीथिंग एक्चुअली,
1: ऑल इन वन.
2: स्टेकेशन हो भी सकता है, बिकॉज ट्यूसडे की छुट्टी में अप्लाई कर दूंगा, सो आई एम जस्ट मेकिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड.
1: नहीं, होल्ड ऑन, कर दूंगा मतलब, इजंट इट अ बिट टू लेट नाउ?
2: नहीं, कल अप्लाई तो कल कर दिया था, बट अप्रूव नहीं हुआ अभी, तो अभी जाके बोलूंगा बॉस को कि अप्रूव कर दे.
1: बहुत याराना लग रहा है अर्जुन. चलो यार, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड एंड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर एट बिग 106.2. आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं,
2: ऑल विशिंग यू. कभी नहीं लगता रेडियो पे, बट आई थिंक मेरा बर्थडे आज इसलिए आज लग गया.
1: हाँ, वो होता है ना यार, कि मतलब ये आपका जो क्या कहते हैं, ग्रह जो है वो देव अलाइंड इन सच अ वे दैट यू नो दे आर फेवरिंग यू. सो अर्जुन, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बहुत ही फ्राइडे सवाल पूछा था. इट्स अ सॉन्ग दैट आई कैन लिसन टू एवरी डे ऑफ द वीक, ऑल्दो इट्स अबाउट अ फ्राइडे. नॉट रियली किमी कटकर का नाम जुम्मा था एक्चुअली इस सॉन्ग में, सो डबल मीनिंग इन द राइट वे. बट बताइए, सवाल ये था कि फिल्म का नाम है हम, एंड इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या था?
2: टाइगर.
1: 7 करोड़ तो नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन 2 ओपन मूवी टिकट्स तो आपके हो ही गए हैं. एंजॉय योरसेल्फ एट द मूवीज.
2: ग्रेट, थैंक यू. इस मूवी में मेरे नाम का भी एक कैरेक्टर है.
1: अर्जुन है इसके अंदर?
2: गेस करो, आप गेस करो.
1: अर्जुन नाम का कैरेक्टर इसके अंदर, वॉज इट गोविंदा? नो
2: नो,
1: रजनीकांत?
2: नो, हवलदार अर्जुन सिंह.
1: अर्जुन सिंह एंड कैप्टन जटैक भी था, राइट, इन हम ओनली?
2: करेक्ट, यस यस.
1: एंड वो अमिताभ बच्चन को चश्मे उतार के बक्तावर. आई थिंक यार क्या जबरदस्त मूवी है यार, क्या मूवी हमने याद कर ली साथ मिलकर. एंड व्हाट अ स्टार कास्ट, रजनीकांत, गोविंदा, दो भाई अमिताभ बच्चन के, एंड साथ में किमी काटकर से जुदा हो गए होते हैं.
2: एब्सोल्युटली.
1: डैनी है, डैनी वाज द विलन, राइट? बक्तावर वाज डैनी.
2: यस, करेक्ट.
1: बट आई थिंक कैप्टन जटैक स्टोल द शो यार, टोटल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. अर्जुन, मेनी हैप्पी रिटर्न्स वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट. या
2: Absolutely. Thank you so much for calling.
1: Take care. That is Arjun, हमारे आज के birthday star, हमारे आज के winner as well. And रोज सुबह ये मौका आपके पास आता है to get your hands on 2 open movie tickets in the big Bollywood quiz. फिलहाल the movie release of this weekend, and that is मैं वापस आऊंगा से. Here's that super hit song called Mascara. AR Rahman का music is that kind of song that really grows on you. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: कैप।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: नाम है सेन, सेन ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट,
4: नो इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
3: रियली?
4: या, एंड विद अ इजी कॉम एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
3: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
4: गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, वाइब्रेंट कलर एंड अ नेचुरल लुकिंग फिनिश विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर मेड इन इटली।
5: InsuranceMarket.ie 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Big 106.2. That's My Song by E. And.
7: What?

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
3: This tune, it's game on with Big Ticket.
4: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
3: As 5 more winners take it home 1 million dirhams each.
4: And 4 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
3: Score big, there's plenty in play.
4: Buy your ticket now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: गुड मॉर्निंग, नमस्कार. 13 मिनट ऑन दिस फ्राइडे की सुबह. 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग. इट फील्स लाइक 38 डिग्रीज. हाइज ऑफ 35, लोज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.com.

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: इस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Bro, imagine. You book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
5: Yeah, right. I wish.
4: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Forjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
5: And the apartments?
4: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
5: I'm going now.
4: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
6: Listen to her every day.
7: Mugembo! Khush hua!
8: Hi, Dankar.
9: Hi, Mansi. Good evening. How are you?
8: I'm good. How are you? How was your day?
9: Day was fantastic, quite productive.
8: So, aap corporate job karte hain kya?
9: Ji.
8: Lagi
9: hai. Oil and gas mein.
8: Aapki language se lagi hai. Total email wali language hai ye. Productive and fantastic. Duly noted. Regards. I love this. You know, मुझे बिल्कुल ईमेल लिखना नहीं आता है. Thankfully, God has been very kind कि मेरे काम में मुझे ईमेल लिखने नहीं पड़ते हैं. And thanks to ChatGPT, मतलब अब तो मेरी जिंदगी ChatGPT संभाल रहा है. मेरे तो decisions ही वो ही लेता है. मैंने उसको दे दी जिम्मेदारी. कभी कभार पर ChatGPT इतनी भारी इंग्लिश लिखता है ना ईमेल्स पर कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ. तो मुझे लगता है ये आगे भेजूंगी तो वो सोचेगा ये कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आई है भोपाल की लड़की. Bang on, 5 सेकंड के अंदर आप मुझे बताओ आपको मजा आया कि नहीं. रिव्यू दो मेरी इस कॉल का.
9: 10 out of 10.
8: Will you be touching base again tomorrow?
9: Definitely, I'll try.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: Traffic, 24 जून, 6-11 सबसे पहले Emirates Road पर you'll find 3-4 मिनट की देर heading south going towards Alavir and 7 से 8 मिनट की देर

0: झुमका?
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: नाम है सिद्ध, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: यो यो यो यो करनौजला।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Yes, that's right. You're with me, Zohra, on The Big Mix. Currently, hum baat kar rahe hain about this new list that talks about the most valued Indian celebrity of all time. Now, बहुत सारे नाम हैं इसमें एंड इफ यू नो दिस वाज जस्ट थ्रोन एट यू रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू क्या नाम आता आपके दिमाग में. मेरे दिमाग में तो आता शाहरुख खान इज स्टिल एट नंबर वन फॉर मी एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई वुड अज्यूम और मेक माय गेस दैट ही इज नंबर वन बट टू माय सरप्राइज ही हैज नाउ स्लिप्ड डाउन टू नंबर टू. दिस वन सेलिब्रिटी हैज टेकन ओवर द स्पॉट ऑफ नंबर वन. ओके सो हम टॉप 10 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. मैं नंबर 10 पोजिशन से आपके साथ यूज करने वाली हूँ बट आई एम गोइंग टू लीव द नंबर वन स्लॉट ओपन एंड आई नीड यू टू गेस एंड टेल मी नंबर वन किसने लिया होगा. ठीक है, नंबर 10 पे है दिलजीत दोसांझ. हिज ओवरऑल ब्रांड वैल्यू, हिज टोटल ब्रांड वैल्यू इज एट 1497 crores. नंबर 9 वी हैव अलिया भट्ट. ऑन 8 वी हैव सचिन तेंदुलकर. 7 वी हैव अमिताभ बच्चन. ऑन 6 वी हैव अक्षय कुमार. नाउ द टॉप 5, रणवीर सिंह इज एट 2077 crores. Total brand value income. Number 4 is MS Dhoni at 2,141 crores. 3 pe hai Priyanka Chopra at 2,000.

at 2,507 crore, and we have Shah Rukh Khan on number 2, which is at 3,017 crores total brand value. Number 1 pe is celebrity ne sari celebrities ko matlab takkar deke maat dekar ye position hasil kar li hai. Who do you think this person is who has taken over the number 1 spot? Chota sa hint do. मैंने जो इतना आरसीबी के नारे लगाए हैं वही छोटा सा हिंट है. सो इफ यू थिंक यू नो हु हैज टेकन ओवर द नंबर वन स्पॉट ऑफ बीइंग द मोस्ट वैल्यूड इंडियन सेलिब्रिटी ऑफ ऑल टाइम, कॉल मी 800-1062 और लीव योर मैसेजेस ऑन

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning. Come on. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
3: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jetor T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jetor T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: इट्स 34 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, ह्यूमिडिटी आज फिलहाल है 50% पे, हाइज आज जाएंगे 35 तक एंड लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 30, विच मीन्स रिलेटिवली एटलीस्ट 2-3 डिग्री ही सही, थोड़ा बहुत इट माइट बी कूलर दिस वीकेंड।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
8: बहुत। मैं अपनी

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: This June, it's game on with Big Ticket.
5: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
4: Plus five more winners taking home 1 million dirhams each.
5: And four 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
4: Score big. There's plenty in play.
5: Buy your ticket now at ticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's a plus.
7: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: क्या हो गया भाई ट्रैफिक को? मुझे लगा फ्राइडे वाले दिन एक टेंशन नहीं होता यार, ये ट्रैफिक नहीं होने वाला, बट आज भी सुबह ट्रैफिक मिल गया। स्पेशली इफ यू वर ऑन E44 रासलखोर रोड टेकिंग द D71 फाइनेंशियल सेंटर एग्जिट, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा। एटलीस्ट अबाउट अ 20 मिनट डिले ऑन दैट रोड। नो एक्सीडेंट इज सच, बट काफी ज्यादा ट्रैफिक वहां पे। E311 हेडिंग टुवर्ड्स शारजा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड पर अगर आप है तो द्वार 4 के पास आपको लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक मिल सकता है। दिस इज स्टार्टिंग वर्क का 1 फॉर एटलीस्ट अबाउट 8-9 मिनट्स। उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, 2-3 मिनट का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। ऑल्सो D83 रबात स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास 2-3 मिनट का लाइट ट्रैफिक। एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे।
7: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2 Big Woo! Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फीचरिंग फराज़ तनीस, दिस वन इज़ कॉल्ड बीबा ऑन द बिग मिक्स। गाना ओरिजिनल इतना अच्छा था ये कि इसके जितने भी वर्जन बने आगे जाके सबके सब अच्छे रहे यार। दिस वन आई थिंक सचिन टंडन वाला वर्जन भी, दैट इज ऑल्सो सुपर सुपर फन। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, बट दोनों ही अच्छे हैं। द सॉन्ग इज सो गोटेड दैट यू मेक एनी वर्जन एंड इट स्टिल साउंड गुड। विद दैट वी मेक श्योर टू ब्रिंग यू ऑल द गुड म्यूजिक ऑन द बिग मिक्स। माई नेम इज ज़ोहरा, आपके साथ ऑल द वे अंटिल 2, मेकिंग श्योर दैट ऑल द फन स्टफ इज ब्रॉट टू यू हियर, वेदर इट्स फैशन, वेदर इट्स फिल्म, all that and more, all the way until 2. A very good morning. My name is Zohra.

You're watching cricket, hai na? As a cricket fan, when you're watching the game of cricket and you're supporting team India, you know, puri unity ke saath aap sab log milke World Cup dekh rahe ho aur India ko support kar rahe ho. उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है और आईपीएल शुरू हो जाता है, आप सब बट जाते हो, है ना? नहीं मैं आरसीबी, नहीं मैं सीएसके, नहीं मैं जीटी, मैं ये, मैं वो, सब मतलब अलग अलग हो जाते हैं ना. आई फील दैट हैपन्स विद चाय लवर्स ऑल्सो. लाइक ओवरऑल आप बोलते हो दैट यू आर अ चाय लवर एंड यू लव चाय, बट देन हर किसी की अलग टाइप ऑफ फेवरेट चाय होती है, यू नो. वहाँ पे हमारे झगड़े होने लग जाते हैं इवन एज चाय लवर्स. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. सो एज अ चाय लवर, ये लिस्ट मेरे सामने आई है विच टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट टीज, है ना, द बेस्ट टीज इन द वर्ल्ड. इस पे नंबर वन पे हमारी एक चाय आई है, बट आई फील लाइक मैं होती तो शायद किसी और चीज को नंबर वन स्पॉट देती. बट एनीवे, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट टी. सो इफ यू आर अ चाय लवर, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो दैट मसाला चाय हैज नाउ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट टी. दिस इज फूड एंड ट्रैवल गाइड टेस्ट एटलस इन देयर लेटेस्ट मे एडिशन. दे हैव अनाउंस्ड द टॉप 100 टीज इन द वर्ल्ड. आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 टाइप्स ऑफ टीज, बट एनीवे 100 टीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इंडियाज बिलव्ड मसाला चाय इज एट द वेरी टॉप, नंबर वन पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? क्योंकि मसाला चाय किसको नहीं पसंद है. And there are many other teas that have been in the list hamare India se, which is Darjeeling tea, which secured the 6th spot. Assam chai was ranked number 13. Kerala ki Suleimani chai, Himachal Pradesh ki Kangra tea, and also Jammu and Kashmir ki iconic pink noon chai was also featured on this list on different rates, on different numbers. Lekin jo hamari masala chai hai, that has reached the number 1 spot. Now, here's where the tricky part comes. Because as a chai lover, I feel like number 1 should be kadak chai, the simple classic kadak chai, not the masala chai, not the disco chai, not the chai jisme 10 alag ingredients padte hain, just chai, jo plain wali chai hoti hai, sadi kadak chai hoti hai, mere liye wo number 1 pe hai. Any day I would prefer it over a masala chai. Which type of chai lover are you? Are you the masala chai lover, the sada kadak chai lover, Lipton wala chai lover, dip dip chai lover, or the Suleimani chai lover? Let me know. 800-106 is the number, call me on. This is the big mix.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
2: Listen to her every day.
5: Mugambo, khush hua.
6: Hi, Divankar.
7: Hi, Mansi. Good evening. How are you?
6: I'm good. How are you? How was your day?
7: Day was fantastic. Quite productive.
6: आप corporate job करते हैं क्या?
7: जी.
6: लगी
7: था. Oil and gas में.
6: हाँ, आपकी language से लग गया. Total email वाली language है ये. Productive and fantastic. Duly noted. Regards. I love this. You know, मुझे बिल्कुल ईमेल लिखना नहीं आता है. Thankfully, God has been very kind कि मेरे काम में मुझे ईमेल लिखने नहीं पड़ते हैं. And thanks to ChatGPT, मतलब अब तो

0: मेरी जिंदगी चैट जीपीटी संभाल रहा है, मेरे तो डिसीजंस ही वही लेता है, मैंने उसको दे दी जिम्मेदारी कभी कभार। पर चैट जीपीटी इतनी भारी इंग्लिश लिखता है ना ईमेल्स पर के मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ, तो मुझे लगता है ये आगे भेजूंगी तो वो सोचेगा ये कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आई है भोपाल की लड़की। बैंग ऑन 5 सेकंड के अंदर आप मुझे बताओ आपको मजा आया कि नहीं, रिव्यू दो मेरी इस कॉल का।
1: 10 out of 10.
0: Will you be touching base again tomorrow?
1: Definitely, I'll try.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the Beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big Weather Update brought to you by Alras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
0: It's 34 degrees Celsius outside. Humidity आज फिलहाल है 50% पे. Highs आज जाएंगे 35 तक and lows will drop down to about 30, which means relatively at least 2-3 degree ही सही. थोड़ा बहुत it might be cooler this weekend.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

लॉ मेंडोज़ा की आवाज सूरज की बाहों में राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. वी आर हेडिंग इनटू द थर्ड आवर ऑफ द शो. 12 बजने को आए हैं. मेरा और आपका साथ और दो घंटों के लिए ऑल द वे अंटिल 2. दिस इज द बिग मिक्स.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: market.ae.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: क्या हो गया भाई ट्रैफिक को? मुझे लगा फ्राइडे वाले दिन एक टेंशन नहीं होता यार, ये ट्रैफिक नहीं होने वाला, बट आज भी सुबह ट्रैफिक मिल गया. स्पेशली इफ यू वर ऑन E44 रासलखोर रोड टेकिंग द D71 फाइनेंशियल सेंटर एग्जिट, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा. एटलीस्ट अबाउट अ 20 मिनट डिले ऑन दैट रोड. नो एक्सीडेंट इज सच, बट काफी ज्यादा ट्रैफिक वहां पे. E311 हेडिंग टुवर्ड्स शारजा शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर अगर आप है तो तवार 4 के पास आपको लाइट से मोटर ट्रैफिक मिल सकता है. दिस इज स्टार्टिंग वर्का 1 फॉर एटलीस्ट अबाउट 8 to 9 मिनट्स. उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, 2 to 3 मिनट का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. ऑल्सो D83 रबात स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास 2 to 3 मिनट का लाइट ट्रैफिक. एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे.
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शन, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: It's 34 degrees Celsius outside. Humidity आज फिलहाल है 50% पे. Highs आज जाएंगे 35 तक and lows will drop down to about 30, which means relatively at least 2-3 degree ही सही. थोड़ा बहुत it might be cooler this weekend.
5: Alras Auto AC spare parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: कहाँ डर रही है? मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
3: Mugembo!
4: So Zaid, I was talking about this boy, जब girlfriend ने कहा कि यार कुछ कपड़े ही नहीं है, I don't have anything to wear, which is a standard statement. We all say that. तो बंदे ने साल भर के कपड़े gift कर दिए अपनी girlfriend को. जब आपकी girlfriend आपसे बोलती है ऐसा कुछ, तो आप क्या करते हैं Zaid?
5: So very recently my wife told me कि she does not have enough trousers. I went to a shop, bought exact same trouser in 5 different colors, and I was like, please. Nothing for next 2 months.
4: Very nice. मतलब such men do exist, और वो भी बीवी के लिए. वाह यार.
5: And it happened only 2 days back.
4: Bibi is there with you?
5: Hi,
4: you are very lucky. Touchwood. मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये AI generated story है. ऐसे बंदे होते नहीं है. आपके बंदे ने तो कह दिया यार.
6: Yes, this type of men exist. So
4: amazing. कहाँ से download किया है ये Zaid को आपने? मुझे भी चाहिए. इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जरा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो एक कलर के ट्राउजर की जगह 5 कलर के ट्राउजर ले देते हैं?
5: We used to work together. I was her manager.
4: Office romance.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: क्या हो गया भाई ट्रैफिक को? मुझे लगा फ्राइडे वाले दिन एक टेंशन नहीं होता यार, ये ट्रैफिक नहीं होने वाला, बट आज भी सुबह ट्रैफिक मिल गया. स्पेशली इफ यू वर ऑन E44 रासलखोर रोड टेकिंग द D71 फाइनेंशियल सेंटर एग्जिट, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा. एटलीस्ट अबाउट अ 20 मिनट डिले ऑन दैट रोड. नो एक्सीडेंट इज सच, बट काफी ज्यादा ट्रैफिक वहां पे. E311 हेडिंग टूवर्ड्स शारजा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड पर अगर आप है, तो द्वार 4 के पास आपको लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक मिल सकता है. दिस इज स्टार्टिंग वर्क का 1 फॉर एटलीस्ट अबाउट 8 to 9 मिनट्स. उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक ऑन D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, 2 से 3 मिनट का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. ऑल्सो D83 रबात स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के पास 2 से 3 मिनट का लाइट ट्रैफिक. एनी अदर अपडेट, लेट अस नो 4305 पे.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood The Big Mix brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247.
0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

शाश्वत सचदेव एंड खान साहब जान से गुजरते हैं राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद दैट इट्स माय टाइम टू टेक योर लीव. मैं भी यहां से गुजरने वाली हूं. मेरी आवाज, मेरा अंदाज आपको पसंद आया हो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ज़ोहरा अमीन वहां पर मेरा हैंडल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम फॉर ऑल डेली फन कंटेंट. आई विल नाउ सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग. आई नो आप छुट्टी पर होने वाले हो, बट आई विल स्टिल बी हियर. मुझे रहना है, आप क्या कर लोगे? मैं रहूंगी आपके साथ 10 से 2 के बीच ऑन द बिग मिक्स. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: मिलाने मिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ae.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो.
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो.
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने ये हैं सारे 90s के नायाब गाने। जतिन ललित स्पेशल आप सुन रहे हैं बिग 106.2 पे। एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर डुओ जिन्होंने जस्ट आउटस्टैंडिंग हिट्स दिए, एंड आई थिंक उसी की क्रेडिबिलिटी की वजह से फिल्म्स ने भी छलांग मारी। ऑफ कोर्स उसमें बड़े स्टार्स थे, शाहरुख थे एंड यू नो काजल थे, जूही, ऑल द बिगीज वर देयर, बट ऑफ कोर्स द म्यूजिक वाज सो इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम एंड विदाउट द एल्बम्स लाइक दीस वो हो नहीं सकता था। प्यार तो होना ही था से आपने गाना सुना। उज्जवल खन्ना के साथ हैं
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: फिल्म चलती थी क्योंकि गाने चलते थे, या फिर गाने चलते थे इसलिए फिल्म चलती थी, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क था 90s के टाइम पे। लेकिन चूंकि म्यूजिक को इतना हॉट सेल करा जाता था तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक यूज टू टेक द प्रेसिडेंस ओवर फिल्म्स एंड द स्क्रिप्ट्स, एंड ऑफ कोर्स पीपल लर्न द म्यूजिक फर्स्ट एंड देन दे वेंट टू द थिएटर्स। जतिन ललित की जहां तक बात है, नाउ अगेन इनक्रेडिबल कॉम्पोजिशन और यस बॉस के सारे गाने वो भी कमाल है। जस्ट हैव अ लिसन टू हिम अनप्लगिंग, दिस इज ललित।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
3: हम लोग मेरा भाई, हम लोग के अंदर इतना एक बहाव की तरह क्रिएटिविटी आ रही थी। आप ये समझ लीजिए कि अजीज मिर्जा साहब का भी प्राइम टाइम चल रहा था, हमारा भी प्राइम टाइम चल रहा था, और शाहरुख साहब तो तब से लेके आज तक उनका प्राइम टाइम ही चल रहा है। जावेद साहब लिख रहे थे

0: यहाँ वो नोट हमेशा गलत लगाता था, तो यश जी ने हमसे कहा था कि इसके दो गाने तुम लोग कर दो। यश जी के साथ काम करने का हमको मौका वही मिलता।
1: लव चुप रहे तो बोले की नजर।
2: पूरी जो एल्बम थी वो कमाल थी, एंड अगेन द फिल्म डिड रियली वेल एट द बॉक्स ऑफिस। उसी फिल्म से गाना मैं कू ये सा गीत अभिजीत की आवाज आपके साथ अंटिल 5। दिस इज द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ।
5: So Zaid, I was talking about this boy, जब girlfriend ने कहा कि यार कुछ कपड़े ही नहीं है, I don't have anything to wear, which is a standard statement, we all say that. तो बंदे ने साल भर के कपड़े गिफ्ट कर दिए अपनी girlfriend को। जब आपकी girlfriend आपसे बोलती है ऐसा कुछ, तो आप क्या करते हैं Zaid?
6: So very recently my wife told me कि she does not have enough trousers. I went to a shop, bought exact same trouser in 5 different colors, and I was nothing for next 2 months.
5: Very nice. मतलब such men do exist, और वो भी बीवी के लिए। वाह यार।
6: And it happened only 2 days back.
5: बीवी is there with you? Hi, you are very lucky. Touchwood. मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये AI generated story है, ऐसे बंदे होते नहीं है। आपके बंदे ने तो कह दिया यार।
7: Yes, this type of
5: man
7: exists. So
5: amazing. कहाँ से download किया है ये Zaid को आपने? मुझे भी चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जरा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो एक कलर के ट्राउजर की जगह 5 कलर के ट्राउजर ले देते हैं?
6: We used to work together. I was her manager.
5: Oh, office romance.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Jatin Lalit, special ups on Rare, Fast Track Song of the Hour, brought to you by Self Drive, DDLJ. Now, I don't need to explain anything about the album of this type, of this standard, of this scale. Matlab, Jatin Lalit aur saath mein Yash Chopra, everything about this film was right, and Lalit Pandit, he's talking about this.
2: मैं एक चीज आपको बताऊं, दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर जो है वो एक हमारी सिटिंग हुई थी यश जी के साथ में, ऐसे मतलब कि जनरल सुनाने के लिए कि हमको आपके साथ काम करना है। तो आदित्य चोपड़ा भी बैठे हुए थे, मगर हमको पता नहीं था कि कुछ क्या कर रहे हैं। दोनों बेटे बैठे हुए थे और देवन वर्मा साहब बैठे हुए थे और हनी जी बैठी हुई थी और पैम जी, यश जी और उदय बैठे हुए थे। तो सुन रहे थे हमको, हमने बहुत लंबी सेटिंग की, 3.5 घंटा हम उनको गाने सुना रहे थे, मगर यश जी पे कॉन्सेंट्रेशन था कि इनकी पिक्चर पकड़नी है हमको। तो पिक्चर सेटिंग खत्म हुई और बाद में कुछ फोन वोन नहीं आया, तो हमसे यार शायद गड़बड़ हो गया। मगर आदित्य चोपड़ा का फिर बाद में फोन आया हमको कि करीब 2 महीने बाद समथिंग कि आप लोग क्या कर रहे हैं।
3: 2 महीने बाद
2: बोला आप लोग ऑफिस में आएंगे, जरा मैं बात करना चाहता हूँ। तो हम लोग गए तो ही रिमेम्बर 2 songs आउट ऑफ द सिटिंग। 1 वाज मेहंदी लगा के रखना, कि वो गाना है क्या आप लोग के पास, बिकॉज ही कनेक्टेड विथ हिज स्क्रीन के अंदर। और एक मैंने ट्यून सुनाई थी मेरे ख्वाबों में, तो वो ट्यून गाई थी, मुझे वर्ड तो नहीं पता उसके, वो ट्यून कर रहे थे। तो ये 2 गानों की वजह से डीडीएल हमको मिली।
1: एंड अच्छी बात है, फिल्म इनको मिली, इनका पूरा करियर ट्रैजेक्टरी चेंज हो गया डीडीएलजे के बाद, एंड एवरीवन वाज जस्ट सेइंग दीज 2 नेम्स, जतिन एंड ललित, आपके साथ अंटिल 5। दिस इज द बिग लाइफ, ऑल अबाउट देम इन माय थीम ऑफ टुडे।

0: 105.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

कुछ कुछ होता है ऐसे गाना कुमार शानू की आवाज़ ऑल अबाउट जतिन ललित इन माय थीम आवर टुडे। कुछ उनके आपने कमाल गाने सुने, अभी दो गाने और बचे हैं। एक ये जो मैं प्ले करने वाला हूँ जो प्यार किसी से होता है। सारी की सारी एल्बम्स कैसे ब्लॉकबस्टर हो सकती है, एक एक गाना हर फिल्म का कैसे इतना हिट हो सकता है। इसमें तो मतलब थॉरो म्यूजिक कंपोजिशन लगी होगी एंड जो मेहनत है और जो गाने की जो डिस्कवरी होती है वो म्यूज़िक से शुरू होती है। एंड आई गेस सुबह दोपहर शाम अगर आप सिर्फ धुनें बनाते रहो तो गाने ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और फिर उसको बस लिरिसिस्ट को भेजने की औपचारिकता मात्र रह जाती है। हालांकि प्रोसेस ऐसा होता है कि पहले लिरिसिस्ट गाना लगता है और उसके ऊपर फिर जो धुन है वो म्यूज़िक कंपोजर्स बना देते हैं, लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की आइडिया यूरेका मोमेंट किसका है। वो स्टिल लॉकडाउन बिग 106.2 पे That's what I'm playing now. Oh, Jana Na Jana, Kumar Shanu ki awaaz. Aapke saath until 5. Aap sun rahe hain The Big

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
6: Yeah, right. I wish.
5: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
6: And the apartments?
5: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
6: I'm going now.
5: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
0: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
1: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, the beat of Bollywood।
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
9: खेद है इस के लिए। उज्ज्वल खन्ना के साथ बिग 106.2 के 34 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस इज द करंट टेम्परेचर, फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस। सीवियर वेदर अलर्ट आई हुआ, एक्सेसिव हीट। प्लीज अपने आपको हाइड्रेशन वाला करें, वैसे तो हम रखते ही हैं लेकिन एसी में हम जनरली पानी पूरा भूल जाते हैं। मेक श्योर दैट योर बॉटल इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, लाइक आई हैव माई बॉटल राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। 31 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम दैट वी गो डाउन टू, ह्यूमिडिटी अबाउट 53%। अब नेक्स्ट कम्स इन सुनिधि चौहान की आवाज में, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। आपके साथ कुछ ऐसे ही इजी ब्रीजी गाने, कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं इस वक्त, और यू कैन डू इज टेक्स्ट अस ऑन 106.2 बिग एफएम।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million

0: सुरी दी चौहान के आवाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। वेल, इफ यू आर प्लानिंग टू उड़ा फॉर योर मनी, आई थिंक सेफ इन्वेस्टमेंट्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। रियल एस्टेट इज समथिंग दैट वी ऑल एस्पायर टू इन्वेस्ट इनटू। इफ यू आर इनटू वन, देन यूएई हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट रैंकिंग्स आई है उसमें अव्वल पे आया है द यूएई एंड इट्स सिक्योर्ड इट्स पोजिशन at the top notch in the investor friendly policies. Ye jo global survey tha, it revealed that 56% of investors plan to increase their investments in the UAE property market, while 51% are already familiar with its opportunities, chahe wo legal protections ho, chahe seamless property ownership ho, competitive returns ho. They continue to attract investors from India, Saudi, Egypt and across Europe. Agar aapka mood hai, then I think by the end of the year, hopefully the things, they get better and better and better, and then you can start thinking about it wisely. Fast Track Song of the Hour, brought to you by Subdrive, aapke saath until 5.
1: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

ये जो फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, और इसमें यू नो देयर इज सो मच सोल टू इट दैट यू फील लाइक ओ माय गॉड दिस सॉन्ग शुड नेवर स्टॉप. उड़ता पंजाब से गाना है, सच एन अंडररेटेड सॉन्ग इट इज. बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ है, टाइम टू रैप इट अप. बट हाँ, हमारा जो वीकेंड है वो बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं है. इनफैक्ट वो हाईली रेटेड है, ओवररेटेड है. 3 days ऑफ ऑफ इज व्हाट वी गेटिंग. यू हैव अ फैंटास्टिक लॉन्ग वीकेंड ऑफ 3 days. अपने प्लान बनाइए, जाइए इधर उधर दोस्तों के यहाँ. अगर आपके फैमिली है तो प्लीज गो मीट इन फैमिली. लाइक माई वाइफ, शी गोज to my in-laws. He spends like a couple of days there. My son also loves sort of being with Mamu and Nanu and Nani. So I hope you do that too. And of course, we shall meet on... I'll come back on Monday, but we shall all meet together on Tuesday. Wrapping it up, Javed Bashir ki awaaz with the track is Mera Yaar Hai Rab Warga from the film Bhag Milka Bhag on Big 106.2. Keep following us on our socials, 106.2 Big FM. God bless you and your family. Stay safe. Drive safe.

0: दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
4: Score! I guarantee 25 million dirham grand prize.
3: Plus, 5 more winners take home 1 million dirhams each.
4: And weekly cash prizes still to be won.
3: So, what are you waiting for?
4: Buy your ticket now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Big 106.2. That's My Song by E.N.

लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Good evening. Finally, it's a Friday. We're getting into a long weekend. I'm sure you're in that mood. I'm in that mood. We'll bring in the long weekend together. All set to keep you company here until 9. Fantastic playlist hai. Great company. Main aapke sadhu plus. अब आज फ्राइडे से घर जाते जाते माहौल बड़ा अच्छा होगा क्योंकि मंडे का चेहरा ही नहीं देखना है. मतलब मंडे इज गोना बी अ छुट्टी एंड देयर इज नथिंग बेटर देन नॉट गोइंग टू वर्क ऑन मंडेज, राइट? सो यार, वी प्लेइंग द 5 second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई गिव यू फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें आपने बतानी होती हैं. 5 second के अंदर अगर आपको लगता है कि आप ये कर लेंगे, इट्स अ फन गेम दो, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. किक स्टार्टिंग द शो विद

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, we're playing the 5-second rule and bringing in the weekend. Main hu Mansi, phone lines pe Ajmal. Hi, good evening.
2: Good evening, Mansi. How are you?
1: I am good. How are you?
2: I'm doing good. Going home.
1: You're already home or you're on your way?
2: On my way to home.
1: Achha, kya plan hai weekend ka?
2: Weekend, we are planning to go to Abu Dhabi.
1: Oh, very nice. Is that a staycation?
2: Yeah. No, it's not a staycation. It's just to visit Abu Dhabi Grand Mosque.
1: Arre, very nice. Very, very nice. Sabke liye dua kijiyega.
2: Zarur.
1: Mere liye thodi extra kijiyega. Mujhe aajkal bahut zarurat hai dawa ki bhi, dua ki bhi.
2: Sure, definitely.
1: Achha, Ajmal, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. Waise aap karte kya hai?
2: Well, main supply chain officer hoon. I work in Emirates Airlines.
1: Oh, very nice. Big people, man. Big people. Filhal, the game is fun. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai. 5 second ke andar. Fatafat khelne wala game hai. All the best.
0: 5-second rule.
3: Oh, yeah.
1: 3 Shahid Kapoor ki movies. वेरी नाइस और बड़ी ढूंढ ढूंढ के मूवीज निकाली हैं आपने. अच्छा, 3 ऐसे गाने जिनमें दिल आता है. द वर्ड दिल.
2: दिल से रे.
1: हाँ,
2: दिल दिया गल्ला.
1: और टाइम खत्म हो गया.
2: दिल तो है दिल.
1: नहीं, दिल तो है दिल से. ये 5 सेकंड. 3 रेड फ्लैग्स फॉर यू इन अ मैरिज.
2: वेल, मनी, डाउरी एंड डिसरिस्पेक्ट.
1: मनी मतलब क्या होता है शादी के बाद?
2: इन द सेंस पीपल सी यू वेदर यू आर अर्निंग वेल और नॉट.
1: अच्छा,
2: ज्यादा
1: प्यार के लिए शादी करो, पैसे के लिए नहीं. 3 ऐसे झूठ अजमल जो बीवी से बोलते हो.
2: ओके, एंड आई डोंट पार्टी आउट विद फ्रेंड्स.
1: अच्छा, टाइम खत्म हो गया है. हाउ डू यू नॉट टेल हर दैट यू आर पार्टिंग आउट? मतलब क्या बहाना देते हो? आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द हस्बैंड्स.
2: वी आर वाचिंग अ मूवी ऑल फ्रेंड्स टुगेदर. मूवी देख रहे हैं घर में बस.
1: हाँ, सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है जो शादी के बाद बंदे झूठ बोलते हैं.
2: क्या करें दोस्तों
3: के
1: साथ? ये मुझे आज तक की लॉजिक समझ भी नहीं आया कि बीवियों को प्रॉब्लम क्या है दोस्तों के साथ. जब मेरी होगी शायद मैं तब रियलाइज करूंगी. बट फिलहाल Not bad, huh? You played really well for the first time.
2: Thank you so much.
1: You have a great weekend. Ajmal, I hope you had fun.
2: Yes, I had. I hope I would have won something, but...
1: बात करिए आपने मुझसे, ये काफी नहीं है आपके लिए?
2: नहीं,
1: है कोई मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं,
2: पर
1: अजमल मेरा दिल टूट गया. मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है. मटेरियलिस्टिक हो क्या आप?
2: ओह माय गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है.
1: अभी आप कह रहे थे प्यार के लिए शादी करो, तो आप प्यार के लिए बात कर लो मुझसे. इसमें भी आप मांग रहे हो कुछ?
2: मैरिड होना तो.
1: अरे तो मैं वैसा वाला प्यार थोड़ी ना बोल रही हूँ. ऐसी
2: लेट मी कंप्लीट. मैं फायदा ढूंढते रहता हूँ भाई. कुछ कर रहा हूँ तो फायदा हो.
1: जिंदगी में ना सबसे खुशी तब मिलती है जब आप बिना फायदे के कुछ करो. वर्ड्स ऑफ विजडम भी मैंने आपको दिए फ्री में. तो यूज दिस एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. लवली टॉकिंग टू यू. बाय.
2: Bye.
1: Yeah, 5 second rule. आपने खेलना है. एक ही रूल है. कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी, दिस इज द बिग थ्रिल मानसी। वैसे देसी शादियों में कुछ मिले या ना मिले, आपको कलेश और ड्रामा 100% मिलेगा। अब आप ये पिक्चर कीजिए, द वेन्यू लुक्स अमेजिंग, लाइटिंग परफेक्ट है, दूल्हा जो है शेरवानी पहने तैयार बैठा है, एंड सहरा बंदी की बात आती है, एंड दिस इज अ ट्रेडिशन जिसमें एक पगड़ी पहनाई जाती है दूल्हे को, उसको सहरा पहनाया जाता है जिसमें आगे फूल होते हैं, राइट। तो एक तरफ हैं दूल्हे के पिताजी, जो ऑफ कोर्स उनका पूरा हक है कि वो ही सहरा बंदी करें, बट दूसरी तरफ हैं दूल्हे के मामा जी, जो कह रहे हैं नहीं ये मैं करूंगा। दोनों बैकआउट नहीं कर रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, एंड इसके बाद जो होता है वो एक वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं, दैट्स मेकिंग राउंड्स इन सोशल मीडिया। कुर्सियां उड़ रही हैं, अंकल्स जो हैं एक दूसरे के डिजाइनर सिल्क कुर्ते जो है वो फाड़ रहे हैं, लेस लाइक अ वेडिंग मोर लाइक अखाड़ा। बेस्ट पार्ट ये है कि वीडियो में दिखाया बेचारा दूल्हा साइड में बैठा हुआ है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं। आई थिंक यू कैन लिटरली सी हिम रीथिंकिंग एवरी सिंगल लाइफ चॉइस दैट लेट हिम टू दैट स्टेज। बट ट्रस्ट मी, वी ऑल बीन देयर। हम सबके घरों की शादियों में भी कुछ ना कुछ कलेश तो होता ही है, एक फैमिली मेंबर होता ही है जो कलेश ही होता है। अगर आपको भी अपनी शादी का या अपने घर में किसी शादी का कलेश याद आ रहा है तो मुझे बता सकते हो ऑन 800 1062। व्हेन आई कम बैक, योर चांस टू विन open

0: स्पॉट सैलरी डे ऑब्वियसली अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी हेक्टिक भी। कैश निकालो, बिल्स और एक्सपेंसेस के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए एक्सचेंज सेंटर के चक्कर लगाओ।
1: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? ई एंड मनी यूज करो।
0: क्या सैलरी के लिए?
1: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली ई एंड मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
0: जैसे क्या?
1: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
0: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
1: बिल्कुल, ई एंड मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो ई एंड मनी के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: The Big Mix. Weekdays 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 35 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 31, प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 59% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Wow.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey. पठाठा बड़ा है दिल नहीं देना था।
4: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
5: हाँ जी, मैं हूँ मानसी। आज तो खुशी का कोई नजर ही ना लगाए। काला टिक्का, ऐसी लॉन्ग वीकेंड जिंदगी में आते रहे तो जिंदगी अच्छी रहती है। फिलहाल वाइल वी गेटिंग इनटू द लॉन्ग वीकेंड, आई एम गिविंग यू अ चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स। ऑल्सो दिस न्यू रिसर्च दैट इज कमिंग, इफ यू आर समवन जो सुबह एटलीस्ट 2 या 3 बार अपना अलार्म स्नूज करते हैं, तो बस आप इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, पीपल हु स्नूज देयर अलार्म एटलीस्ट 3 to 4 times इन द मॉर्निंग आर वेरी इंटेलिजेंट, देयर IQ इज रियली रियली हाई, and they are more efficient at work. More on this research when I come back.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is The Big Thrill. We're getting into a thrilling, exciting long weekend. And what better than winning open movie tickets so that आपका जो movie देखने का दिल है आप देख के आ सकते हैं. From Obsession that's trending to मैं वापस आऊंगा जिसके लिए मैं बहुत excited हूँ. आने वाले week में आप Cocktail 2 देख सकते हैं. बहुत सारी movies हैं. The choice is going to spoil you, but for that you'll have to win open movie tickets. In the month of June back in 1998 ये movie release हुई थी and इस movie को 44th Filmfare Award में 6 nominations मिले थे. Best Film, Best Director, Best Actor, won the Best Scene of the Year as well. And again, इतनी बड़ी cult है ये movie कि 1998 में Bollywood ने release करी थी. Then it was remade in Tamil in 2000s. Vikram Bhatt ने इसे direct किया था. And it was based on the waterfront by Bud. Produced by Mukesh Bhatt, Aamir Khan, रानी मुखर्जी, दीपक तिजोरी, शरद सक्सेना एंड ऑफ कोर्स सम आइकॉनिक म्यूजिक. अब जतिन ललित का म्यूजिक. रानी मुखर्जी इनफैक्ट वाज वेरी अपसेट क्योंकि रानी की आवाज डब की गई थी इस मूवी में. कमर्शियली अ मैसिव हिट एट द बॉक्स ऑफिस, बी द मूवी और द म्यूजिक. एंड वो ट्रेन वाला सीन बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल था. अब अगर आपको याद आ गया मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ एंड ये गाना कौन सा है कुमार सानू की आवाज में, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: हाँ जी, मैं हूँ मानसी। आज तो खुशी का कोई नजर ही ना लगाए, काला टिक्का। ऐसी लॉन्ग वीकेंड जिंदगी में आते रहे तो जिंदगी अच्छी रहती है। फिलहाल वाइल वी गेटिंग इनटू द लॉन्ग वीकेंड, आई एम गिविंग यू अ चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स। आल्सो दिस न्यू रिसर्च दैट इज कमिंग, इफ यू आर समवन जो सुबह एटलीस्ट 2 या 3 बार अपना अलार्म स्नूज करते हैं, तो बस आप इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, पीपल हु स्नूज देयर अलार्म एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन द मॉर्निंग आर वेरी इंटेलिजेंट, देयर IQ इज रियली रियली हाई, and they are more efficient at work. More on this research when I come back.

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Insurersmarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
4: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 35 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 31, प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 59% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, we're bringing in the long weekend. Main hoon Mansi, this is The Big Thrill. And I was just telling you the story ke desi shaadiyon mein paneer kam ho matar mein, but drama ki kami nahi hoti, kalesh hota hi hai. Ye wedding ka video viral ja raha hai jisme mama aur dulhe ke papa mein ladai ho gayi ki sehrabandi kaun karega, matlab kursiyan phenk di, itni physical fight hui hai. Bechara dulha ek kone mein khada hua hai aur soch raha hai ki yaar main yahan kyun hu, kya kar raha hu. Filhal Bharti with us. Hi Bharti.
3: Hi.
2: How are you? क्या प्लान लॉन्ग वीकेंड आने वाला है? आई गया है
3: अभी तो कुछ नहीं है, फिलहाल देखते हैं.
2: बट भारती मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा ना आपको कहानी सुनाई कि देसी शादियों में कुछ कमी हो या ना हो, ड्रामे की बिल्कुल कमी नहीं होती. मतलब देसी शादियाँ इनकम्प्लीट है विदाउट सम ड्रामा फ्रॉम सम फैमिली मेंबर.
3: मेरी खुद की शादी है जिसमें है ना ड्रामा हुआ था.
2: हो, किसने किया था ड्रामा?
3: मेरे कजन बुआ के हस्बैंड ने.
2: तो क्या हो गया था फूफा जी को, क्यों उनका मुंह फूल गया था?
3: अरे वो जब भी आते हैं ना उनको हर चीज परफेक्टली चाहिए होती है, उनको कितना भी कर लेना परफेक्ट देने का, लेकिन वो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालते हैं.
2: कहाँ कमी निकली थी?
3: उनको हर चीज पर्सनल चाहिए. जो हमने होटल बुक करवाया उसमें पर्सनल रूम चाहिए, खाना किसी चीज के लिए हम जो बुक करवाते हैं ना वगैरह, उनका नहीं घर का खाना चाहिए उनको
2: शादी में.
3: यस, उनको घर का खाना बना हुआ चाहिए, वो केटर का नहीं खाते.
2: ओहो.
3: और इंक्लूड कॉकटेल पार्टी, उनको अलग से पार्टी भी चाहिए कॉकटेल की, और नहीं दो तो मुंह सुजा देंगे.
2: यूजुअली बुआएं होती हैं जो ड्रामे करती हैं. ये तो फूफा जी पहले मिले हैं मुझे.
3: नहीं नहीं, उनके हस्बैंड ऐसे ही हैं शुरू से, हम बुलाना तो पड़ेगा ऑफकोर्स, आप रिलेशन है तो. लेकिन बुआ समझदार है तो बुआ कर लेती है हैंडल. ना तक बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ शादी छोड़ के.
2: अरे, तो कोई फिर रोकते हैं लोगों ने मनाते हैं
3: ना सच में. और वो मतलब रहते एमपी में है, सही बोलूं तो
2: मैं भी एमपी से हूँ यार, बट हम इतने कलेशी नहीं है जितने फूफा जी हैं. शगुन कितना डालते हैं इतने सारे ड्रामे करते हैं, तो शगुन भारी होना चाहिए ना इतने ड्रामे के साथ. पता चले
3: वो तो बड़े देखते हैं. मैं खुद अपनी शादी में बिजी थी, मुझे भी बाद में सब पता चला था.
2: चलो जी, तो फूफा जी से बात होती है? फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे है
3: कभी कभी उनके बेटों से बात होती है.
2: दुबई में भी फेमस हो गया आपके फूफा जी. चलो यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड. बाय.
3: थैंक यू सो मच मानसी. बाय बाय.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Good evening. This is The Big Thrill. That was the fast track song of the hour.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: फिलहाल अगर आप भी अपने खुद के बिजनेस का आइडिया फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, दैट यू हैव बीन वांटिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देन दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. एक्सलेंट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन द स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 dirhams. टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया. बाकी अजमान फ्री जोन अथॉरिटी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, इंक्लूडिंग योर वीजा एंड योर बैंक रिक्वायरमेंट. बहुत ही क्विक, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है पूरा प्रोसेस. TNCs do apply. To get your one click license, any other information, visit afz.ae. Filhal coming up, break your spar. Bringing in the long weekend, Mansi. This is The Big Thrill. Big.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही, तेरे बाप का माल है।
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना।
3: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, फ्राइडे की शाम है, मंडे को भी छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है, गर्मी काफी है. द बेस्ट वे टू रिलैक्स इज टू गो टू अ मॉल, गो टू अ थिएटर एंड टू वॉच अ मूवी, राइट? एंड राइट नाउ गिविंग यू चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कल्ट जो रिलीज हुई थी बैक इन 1998 इन द मंथ ऑफ जून एंड वॉज अ मैसिव हिट. म्यूजिक से लेकर मूवी स्टिल अ कल्ट, स्टिल अ क्लासिक. रानी मुखर्जी की शुरुआत के दिन थे एंड हर वॉइस वॉज डब्ड and she was not very happy about it. Aamir Khan saath mein, then there was Sharad Saxena, Ashutosh Rana, Dilip Tahil, who is very, very famous on social media, by the way. Brilliant star cast, a typical 90s wali movie thi, and बहुत ही कमाल स्टंट्स किए थे. In fact, there's a sequence in the movie जिसमें Aamir is running on a rail track towards an oncoming train which misses him by a few feet as he jumps off the track. And sirf कुछ सेकेंड्स का ही फर्क था बिटवीन आमिर एंड द ट्रेन एंड द स्टंट वॉज एक्चुअली परफॉर्म बाय आमिर हिमसेल्फ. इन फैक्ट ही वन द बेस्ट सीन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड आमिर ने खुद को लेटर क्रिटिसाइज भी किया था कि ये अननेसेसरी रिस्क है, मैं आगे से नहीं लूंगा. बट उस सीन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी आमिर खान को मिला था. फिलहाल अगर आपने मूवी गेस कर ली है देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. एंड मूवी के साथ साथ अगर ये गाना भी गेस कर लिया है तो ब्राउनी पॉइंट्स. Let me know. 800-1062 is the number to dial.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Welcome to the last hour of The Big Thrill with Mansi. And if you're someone just about to at least 3-4 bari apna alarm snooze karte ho, to bhai lucky ho. You are intelligent. According to research, jo log subah utke apna alarm at least 2 bar snooze karte hain, unka IQ ज़्यादा होता है, ये एफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, एंड इनका दिमाग आम लोगों से जो स्नूज़ नहीं करते उनसे बेटर होता है। मोर ऑन दिस, फिलहाल स्टार्टिंग दिस आवर विद
2: योर

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: 34 degrees, low jayega around 31. Still pretty humid. Humidity hai 58% par.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, Mansi. This is the Big Thrill right here on Big 106.2, the Beat of Bollywood, a part of Fun Asia Network. यहाँ पे दो ओपन मूवी टिकट्स जीतने का मौका आपके पास था. I gave you a few hints. मूवी जून में 1998 में रिलीज हुई थी. आमिर खान, रानी मुखर्जी. फिलहाल ऑन द फोन लाइन वी गॉट दीपक. हाय.
3: यस, हाय मानसी.
2: हैव यू दीपक, खाना खा रहे हो क्या?
3: फाइन थैंक यू. नहीं नहीं, बस जस्ट घर पे पहुंचा हूं.
2: अच्छा, मुझे लगा खाना खा रहे थे.
3: नहीं, बच्चों को सुला रहे हैं अभी.
2: इतनी जल्दी? ओ कोई बात नहीं, लॉन्ग वीकेंड है तो बच्चों का जल्दी सोना.
3: रात को
2: समझ गई सर, आगे मत बताओ मुझे प्लीज, ये फैमिली शो है.
3: नहीं, रात को घूमने जाना है इसलिए.
2: मैं समझ गई हूँ. फिलहाल क्या प्लान है दीपक लॉन्ग वीकेंड का?
3: नहीं, दोस्त के घर पे बस डिनर के लिए जा रहे हैं. रात को
2: बच्चों को सुला के तो पार्टी शार्टी होगी. सही है यार, पेरेंट्स को भी थोड़ा जरूरी है.
3: हाँ, जरूरी है. ये अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुई है तो एग्जाम के बाद फर्स्ट वीकेंड है ये.
2: हाँ, माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए हमेशा मियाँ बीवी के बीच भी. फिलहाल मैंने आपको हिंट्स दिए थे. मूवी कौन सी थी दीपक?
3: गुलाम.
2: बिल्कुल सही जवाब. डू यू रिमेम्बर वॉचिंग द मूवी? मुझे तो याद भी नहीं, इतने साल पहले कभी देखी थी.
3: मुझे हाँ, उसका बहुत आइकॉनिक गाना था, एक क्या बोलती तू. हाँ, वो भी बहुत फेमस हुआ था.
2: हाँ, क्या खंडाला
3: खाता है क्या खंडाला.
2: हाँ, तो आपने देखी थी ये मूवी थिएटर में?
3: हाँ, देखी हुई है.
2: मुझे तो याद भी नहीं. ऑनेस्टली मैंने थिएटर में भी नहीं देखी थी. आई डोंट रिमेम्बर द मूवी. आई थिंक प्रोबब्ली ओवर द लॉन्ग वीकेंड.
3: नहीं, बहुत फेमस हुआ था गाना ये, और रेडियो पे भी बहुत बजा था. मतलब उस टाइम पे तो वो कैसेट हुआ करते थे, सीडी हुआ करते थे, उसमें भी बहुत बजाते थे.
2: वाह यार, मतलब अमेजिंग मेमोरीज. म्यूजिक तो बहुत अच्छा था, जतिन ललित का म्यूजिक था. तो गाना एक एक कमाल था.
3: बहुत अच्छा गाना.
2: मैंने गाना
3: मूवी भी बहुत अच्छी थी.
2: देखूंगी, मैंने देखी नहीं है. मैं देखती हूँ आपके
3: रिकमेंडेशन पे. आपने जो बताया था वो आइकॉनिक ट्रेन का सीन, वो भी बहुत फेमस हुआ था. उसके बाद काफी लोगों ने वो ट्राई भी किया था, लेकिन
2: आपको फिर से सुना देती हूँ. सर टेंशन की बात है नहीं, इतने बड़े फैन हो आप. याद आया?

0: हम ये जो पार्टी में जा रहे हैं ना उसके लिए माहौल बना रहे हैं यहाँ पे बच्चों को सुला के। चलो कंग्रेचुलेशन, दो टिकट आपके हुए।
1: थैंक यू।
0: एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द वीकेंड। हम इस गाने को इतना अच्छा गा ही दिया दीपक ने, तो हम भी माहौल बना देते हैं, यही गाना सुनते हैं। यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।
1: थैंक यू।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मूवी का नाम अय्या। इसके बिजनेस में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितनी बारी शायद मैंने ये मूवी देखी है ना थिएटर में, किसी ने नहीं देखी होगी। आई हैड सच अ मैसिव क्रश ऑन पृथ्वीराज सुकुमार द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ऑन द बिग स्क्रीन विद द This movie, I fell in love. मतलब I remember I was in the uni in UK and हमारा एक कार्ड हुआ करता था जिसमें आप जाके मूवीज देख सकते हो, हमें डिस्काउंट मिलता था, स्टूडेंट डिस्काउंट, एंड मैं बार बार जाके मूवी देखती थी। एंड द सिक्योरिटी गार्ड देयर आस्क्ड मी एंड ही सेड इज अ फैमिली फ्रेंड और अ रिलेटिव अ पार्ट ऑफ दिस मूवी बिकॉज यू द ओनली वन हू कीप्स कमिंग एंड वॉचिंग दिस मूवी। आई लव्ड अय्या। फिलहाल बिजनेस से याद आया, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट वन, अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस। Great news for all those जो अपना SME शुरू करना चाहते हैं, with a fee starting from 5,555 dirhams. To get your business license, all you need is a business idea. बाकी they'll take care of everything. आपका visa, आपका bank requirement, बहुत ही quick, completely digitized है पूरा process. Terms and conditions do apply. To get your one click license, to apply for one, कोई information चाहिए, visit कीजिए afc.ae.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सॉफ्ट रिदम्स, स्लो वाइब्स एंड सॉन्ग्स दैट हग यू बैक. यू आर इन द बिग चिल जोन ऑन बिग 106.2. ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae.